0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। रविवार को कस्तिल गंदोल्फो में देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें ने ईश्वर के राज्य पर चिंतन किया, जो एक खजाने के समान है और जीवन में परिवर्तन लाता है। उन्होंने ख्रिस्तों को यह पहचानने के लिए आमंत्रित किया कि क्या वास्तव में मायने रखता है। पोप लियो ने कस्तिल गंदोल्फो से देवदूत प्रार्थना का पाठ करने से पहले सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
3: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla.
2: यीशु के शिक्षा के केंद्र में ईश्वर के राज्य का रहस्य है, जिसकी तुलना आज के सुसमाचार पाठ में खजाने एवं मोती से की गई है। ये दृष्टांत उन लोगों के आश्चर्य को दिखाती हैं, जिन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इतना कि सब कुछ बेचना या छोड़ देना भी उन्हें घाटा नहीं लगता, बल्कि फायदा ही लगता है। संत पापा ने कहा, वास्तव में शुरू से ही सुसमाचार लेखक यीशु के पीछे चलने के बुलावे को ऐसा दिखाते हैं जिससे रोका नहीं जा सकता। यह एक स्वतंत्र चुनाव है, फिर भी जरूरी है और एक तैयार एवं पूरे दिल से जवाब देना है। यह इस बात का पहला महत्वपूर्ण पहलू है कि ईश्वर कैसे पास है और खुद को कैसे प्रकट करते हैं। उनके राज्य का सामना एक ऐसा मोड़ है जो जीवन को सीमित नहीं करता, बल्कि उसे विकसित करता है। अगर हमारी तरफ से कुछ बदलना है तो वह सिर्फ इसलिए है ताकि हमारा जीवन सीमित ना हो, बल्कि अधिक संभावनाओं के लिए खोल सके। संत पापा ने कहा, एक दूसरी बात है जिसे यीशु बहुत महत्व देते हैं। खेत में छिपा खजाना पाने वाला शायद एक किसान होगा, जबकि मोती पाने वाला एक व्यापारी जो एक यात्री हो सकता है। इसके बाद और दो दृष्टांत हैं, जिनमें मुख्य पात्र मछुआरे और एक शास्त्री हैं, जो पुरानी और नई दोनों चीजों के जानकार हैं। दूसरे दृष्टांतों में राज्य की तुलना आटा गूंथने या अपना घर साफ करने वाली औरत से, युद्ध की योजना बनाने वाले राजा से, मीनार बनाने वाले आदमी से, प्रबंध करने वाले प्रबंधक से और चरवाहों एवं किसानों से की गई है। संक्षेप में, ईश्वर का राज्य अपनी बेमिसाल सुंदरता को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करता है, लेकिन सभी लोगों को एक गहरे बदलाव के लिए बुलाता है। हर कोई उसे समझता और इसकी ओर खींचा चला जाता है। आज भी कलीसिया उन लोगों का एक समूह है जो अपने मूल संस्कृति, क्षमता और जिम्मेदारियों में अलग अलग हैं, फिर भी यीशु ख्रिस्त में सभी एक के रूप में पहचाने जाने के लिए बुलाए गए हैं, जो एक छिपे हुए खजाने हैं, कीमती मोती हैं, एक जाल हैं जो बिखरे हुए लोगों को एकत्रित करते हैं। शुरू से ही यीशु ने ऐसे लोगों को बुलाया और अपने आसपास एकत्रित किया जो अन्यथा कभी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। इस तरह उन्होंने दिखाया कि ईश्वर सिर्फ कुछ लोगों को पसंद नहीं करते, बल्कि वे अपना प्यार मुफ्त में सभी लोगों को देते हैं। खासकर छोटों या उन्हें जिन्हें छोड़ दिया जाता है। संत पापा ने विश्वासों से कहा, भाइयों एवं बहनों, हमें बस वही वरदान मांगना है, वही उपहार जिससे युवा राजा सुलेमान ने मांगा था। यह अमूल्य मोती को पहचानने का, उस खजाने को पहचानने का वरदान है जिसके लिए सब कुछ बेच देना भी अधिक फायदेमंद है। जबकि उपभोक्ता संस्कृति हमारे पसंद को प्रभावित करती, हमें लगातार ऐसे साधन बेचने के लिए नई जरूरतें उत्पन्न करती हैं जो कभी संतुष्ट नहीं करती और कभी कभी दिल को भी विषक्त कर देती हैं। हमें यह परखने सीखना चाहिए कि क्या वास्तव में मायने रखता। ईश्वर के साथ रिश्ते का खजाना ही मायने रखता है जो हमें खुशी से खोलता और हमें एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को और अधिक खुलकर जीने में मदद करता है। प्रज्ञा का सिंहासन, माता मरियम की प्रार्थना जीवन के लिए हमारी चाह को यीशु की ओर ले जाए ताकि यह उनमें पूरी तरह से पूरी हो सके। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
3: Angelus Domini nunciavit Mariae.
4: Et concevit Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
2: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने नए धन्य घोषणा की याद करते हुए कहा, कल लेबनान में 1899 से 1931 तक मरोनाइट कलीसिया के अंताखिया के प्राधिधर्म अध्यक्ष और पौत्र परिवार की मरोनाइट धर्म बहनों के धर्म संघ के संस्थापक एलियास होए की धन्य घोषणा हुई, जिन्होंने 30 साल से भी अधिक समय तक बड़ी लग्न एवं प्रेरितिक संवेदनशीलता के साथ मरोनाइट कलीसिया का संचालन किया। समाज और आशा के व्यक्ति के रूप में वे कलीसिया, समाज और राजनीति के एक जाने माने व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें महान लेबनान के पिता कहा जाता था। संत पापा ने कहा, नए धन्य की प्रार्थनाएं और दुआएं हमेशा दुनिया भर में मरोनाइट विश्वासों के साथ रहें और लेबनान के सभी लोगों के लिए शांति का वरदान लाएं, जिसको संत पापा ने कहा कि उन्हें बहुत प्रिय है। इसके बाद संत पापा ने पौत्र भूमि और पूरे मध्य पूर्व की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जताई, शांति की अपील दोहराई और तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की। पोप ने कहा, मैं पौत्र भूमि में जारी हिंसा एवं बिगड़ती स्थिति पर चिंता के साथ नज़र रख रहा हूं, जिसमें हाल में वेस्ट बैंक और गजा में कई आम लोगों की जाने गई हैं। मैं हार्दिक अपील करता हूँ कि हर इंसान की समान इज्जत और अधिकारों के आधार पर एक सही राजनीतिक समाधान के लिए बातचीत पर वापस लौटें और नई मिलिट्री कार्रवाइयों एवं एकतरफा फैसलों को नकारें, खासकर जो हर धर्म के पौत्र स्थानों के सम्मान और मौजूदा हालात का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं पूरे मध्य पूर्व की स्थिति के बारे में भी अपनी अपील दोहराता हूँ, जहाँ तेज मिलिट्री कार्रवाई से हिंसा और तबाही हुई है, जिससे कई आम लोगों की जान को गंभीर खतरा है और पीने के पानी एवं बिजली की कमी और भी बदतर हो गई है। मैं दिल की गहराई से इसमें शामिल सभी पार्टियों से गुजारिश करता हूँ कि वे हमले रोक दें और बातचीत एवं कूटनीति के लिए तुरंत जगहों को खोलें, ताकि पूरे इलाके के लिए जितने जल्दी हो सके शांति मिल सके। आइए हम दुनिया के उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो युद्ध के कारण परेशान हैं। ईश्वर जिम्मेदार लोगों के दिलों को छुए और उनके दिमाग को रोशन करे, ताकि जल्द ही मेल मिलाप हो और शांति मिल सके। हाल में फ्रांस एवं स्पेन के अलग अलग हिस्सों में लगी भयानक आग को देखते हुए पोप ने कहा, मैं उन्हें अपना सामीप्य व्यक्त करता हूँ और प्रभावित लोगों एवं बचाव दल के लिए प्रार्थना करने हेतु सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। तत्पश्चात संत पापा ने दादा दादी एवं बुजुर्गों के 6वें विश्व दिवस की याद की, जिसको जुलाई के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। उन्होंने कहा, आज दादा दादी एवं बुजुर्गों का 6वां विश्व दिवस है, जिसकी विषय वस्तु है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। पोप ने कहा, आइए हम सब मिलकर प्रभु को उस कृपा के लिए धन्यवाद दें जो बुजुर्ग लोग कलीसिया और समाज के लिए हैं, और आइए हम उनके कीमती भूमिका का सम्मान करें और उसे महत्व देने के लिए खुद को समर्पित करें तथा हमेशा यह सुनिश्चित करें कि उन्हें सही ध्यान एवं मदद मिल सके। तत्पश्चात संत पापा ने रोम, इटली एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का स्नेहपूर्वक अभिवादन किया। उन्होंने रोम के टाइबर नदी में फ्यूमारोला माता मरियम के जुलूस को भी प्रोत्साहन दिया और माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा, यीशु की माँ मरियम इस खूबसूरत परंपरा में प्रतिभागियों और हम सभी को हर दिन सुसमाचार की शिक्षाओं के अनुसार जीने में सक्षम बनाएं। और अंत में संत पापा ने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
3: E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने 26 जुलाई को पुर्तगाल के उत्तरी शहर लोमेगा में दूसरी आनंद राष्ट्रीय युवा दिवस में भाग लेने वाले पुर्तगाली युवाओं को एक वीडियो संदेश में प्रोत्साहन दिया कि वे अपनी बेचैनी को ईश्वर के करीब आने दें और उनके सामने अपने सबसे बड़े सवाल और गहरी इच्छाओं को प्रकट करें। संत पापा ने कहा, आप अपने भीतर की बेचैनी से न डरें, यह आपको मसीह के और करीब आने और सुसमाचार के मूल्यों की गवाही देने के लिए प्रेरित करे। दृढ़ता से यीशु के वचन में निहित हर दिन के सुसमाचार को पढ़ें और ऐसी भूमि का सपना देखना कभी बंद न करें जहां शांति और भाईचारा हो। न ही दुनिया को आश्चर्य से देखना बंद करें, न ही आशा की रोशनी के साथ भविष्य का सामना करना बंद करें। प्रिय युवाओं, किसी चीज या किसी को भी आपकी आशा चुराने न दें। संत पापा ने अगले साल दक्षिण कोरिया में होने वाले विश्व युवा दिवस का संदर्भ देते हुए कहा, लामेगा शहर में एक आनंदमय सभा जारी रखें और मुझे उम्मीद है कि मैं अगस्त 2027 में सियोल में आपसे मिलूंगा। संत पापा ने युवाओं को जिंदगी के जरूरी सवालों पर सोचने के लिए और अपनी किसी भी परेशानी को ईश्वर के सामने लाकर प्रार्थना में उनसे बात करने के लिए आमंत्रित किया। संत पापा ने जोर देकर कहा, उनसे पूछो, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं कलीसिया और दुनिया के लिए क्या करूं? मेरा काम क्या है? क्या आप मुझे शादी के जरिए परिवार बनाने के लिए बुला रहे हैं या आप मुझे पुरोहित बनने के लिए बुला रहे हैं या धार्मिक जीवन के लिए? ये जरूरी सवाल है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी को भी उस एक बात को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे अंदर की जिंदगी को एक रूपता देती है। ईश्वर हमेशा हमें पवित्रता के लिए बुलाते हैं और संत पूरी तरह से इंसान होते हैं, इसलिए खुद क्रिस्त की तरह सच्चे इंसान बने और आप जरूर इस दुनिया को बेहतर बना देंगे। संत पापा ने 2025 में रोम में युवा जुबली या जून में स्पेन के युवाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकात को याद करते हुए जोर देकर कहा, युवाओं के साथ रहना हमेशा कुछ खास होता है क्योंकि आपके विश्वास का उत्साह फैलता है। आप मसीह के लिए जो प्यार दिखाते हैं वह सुकून देने वाला है। हमारे अपने समय में आप जैसे युवाओं को विश्वास से भरा और इसे कहने से न डरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि आप में सच्चाई के लिए गहरी प्यास है और आप उसे सच्चे दिल से खोजते हैं। यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि आप न्याय और दया के भूखे हैं और गुजरते हुए मूल्यों से संतुष्ट नहीं हैं। क्रिस्त हमारे साथ हैं और वे ही हमारी खुशी की वजह हैं, वे ही हमारी एकता के स्रोत हैं। इन इल्लो उनो उनुम, भले ही हम बहुत सारे हैं, हम क्रिस्त में एक शरीर हैं। संत पापा ने युवाओं से कहा कि वे जहां भी हों वहां खुश रहें और सभा में शामिल सभी लोगों के लिए स्वर्गीय कृपाओं की दुआ की। उधर पवित्र भूमि के संरक्षण के स्कूलों के प्रमुख फादर इब्राहिम फलतास वेस्ट बैंक की स्थिति पर दुख जताते हैं और उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं और उन लोगों को भी जो इस कभी न खत्म होने वाले चक्र को रोकने के लिए दखल नहीं देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसराइल और फिलिस्तीन में घोषित चुनाव दोनों लोगों के लिए नया संतुलन और नया न्याय लाएंगे। फादर इब्राहिम फलतास ने कहा, गाजा की तरह वेस्ट बैंक एक ऐसा इलाका बन गया है जिसने अपना पैमाना और अपनी जगह खो दी है। एक ऐसी जगह जो अब पहचानी नहीं जाती, एक ऐसी जमीन जो शारीरिक और सामाजिक रूप से बटी हुई है, गहरे जख्मों से भरी हुई है और अपनी ऐतिहासिक पहचान से बेइज्जत है। इस जमीन का हर कोना हर दिन हिंसा और तबाही झेल रहा है। हर रहने वाला तंगी, पाबंदियों और तकलीफों और बेइज्जती को झेलता है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी बदतर होती जा रही है। इतने सालों में बस्तियों ने
हर गांव सामुदायिक जीवन के हर निशान को घेर लिया है। वे फिलिस्तीनी जिंदगी को बिना अपनाए घेर लेती हैं। वे उनका दम घोंट देती हैं। वे नौजवानों की आशाओं को मार रही हैं, जो अब अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे उन लोगों की उम्मीदों को तोड़ रहे हैं, जिन्होंने अतीत और वर्तमान को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वे उन बच्चों के मुस्कान और सपनों को चकनाचूर कर देते हैं, जो अपनी जमीन को जलते, सीमित होते और रंगहीन होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा खत्म करने के लिए संत पापा लियो की जोरदार अपील सुनी जानी चाहिए, जो दोनों को, जो इसे करते हैं और उन लोगों को भी जो इसे कभी न खत्म होने वाले चक्र को रोकने के लिए दखल नहीं देते। उम्मीद कि इतिहास का रास्ता बदल सकता है, उन लोगों को कभी नहीं छोड़ती जिन्हें ईश्वर पर भरोसा और विश्वास है। उधर बर्लिन में एक कार्यक्रम के दौरान एक मिनी वैन का तेज रफ्तार से भीड़ में घुसने के बाद स्थानीय कलीसिया जर्मन नेता और यूरोपीय अधिकारी नफरत का विरोध कर रहे हैं। बर्लिन के महाधर्माध्यक्ष हेनर कोच ने जर्मन कैथोलिक न्यूज एजेंसी को शनिवार 25 जुलाई की शाम को हुए इस हमले के बारे में कहा कि यह कितनी भयानक घटना है, नफरत को जीतना नहीं चाहिए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 30 लोग घायल हो गए। यह हमला जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ। रात करीब 10 बजे एक सफेद मिनी वैन टियर गार्डन सिटी पार्क में जमा भीड़ में घुसती हुई देखी गई, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। एक महिला और 16 दूसरे लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत बहुत गंभीर है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। रविवार को कस्तेल गंदोल्फो में देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें ने ईश्वर के राज्य पर चिंतन किया, जो एक खजाने के समान है और जीवन में परिवर्तन लाता है। उन्होंने ख्रिस्तों को यह पहचानने के लिए आमंत्रित किया कि क्या वास्तव में मायने रखता है। पोप लियो ने कस्तेल गंदोल्फो से देवदूत प्रार्थना का पाठ करने से पहले सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
3: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla.
2: यीशु के शिक्षा के केंद्र में ईश्वर के राज्य का रहस्य है, जिसकी तुलना आज के सुसमाचार पाठ में खजाने एवं मोती से की गई है। ये दृष्टांत उन लोगों के आश्चर्य को दिखाती हैं, जिन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इतना कि सब कुछ बेचना या छोड़ देना भी उन्हें घाटा नहीं लगता, बल्कि फायदा ही लगता है। संत पापा ने कहा, वास्तव में शुरू से ही सुसमाचार लेखक यीशु के पीछे चलने के बुलावे को ऐसा दिखाते हैं जिससे रोका नहीं जा सकता। यह एक स्वतंत्र चुनाव है, फिर भी जरूरी है और एक तैयार एवं पूरे दिल से जवाब देना है। यह इस बात का पहला महत्वपूर्ण पहलू है कि ईश्वर कैसे पास है और खुद को कैसे प्रकट करते हैं। उनके राज्य का सामना एक ऐसा मोड़ है जो जीवन को सीमित नहीं करता, बल्कि उसे विकसित करता है। अगर हमारी तरफ से कुछ बदलना है तो वह सिर्फ इसलिए है ताकि हमारा जीवन सीमित ना हो, बल्कि अधिक संभावनाओं के लिए खोल सके। संत पापा ने कहा, एक दूसरी बात है जिसे यीशु बहुत महत्व देते हैं। खेत में छिपा खजाना पाने वाला शायद एक किसान होगा, जबकि मोती पाने वाला एक व्यापारी जो एक यात्री हो सकता है। इसके बाद और दो दृष्टांत हैं, जिनमें मुख्य पात्र मछुआरे और एक शास्त्री हैं, जो पुरानी और नई दोनों चीजों के जानकार हैं। दूसरे दृष्टांतों में राज्य की तुलना आटा गूंथने या अपना घर साफ करने वाली औरत से, युद्ध की योजना बनाने वाले राजा से, मीनार बनाने वाले आदमी से, प्रबंध करने वाले प्रबंधक से और चरवाहों एवं किसानों से की गई है। संक्षेप में, ईश्वर का राज्य अपनी बेमिसाल सुंदरता को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करता है, लेकिन सभी लोगों को एक गहरे बदलाव के लिए बुलाता है। हर कोई उसे समझता और इसकी ओर खींचा चला जाता है। आज भी कलीसिया उन लोगों का एक समूह है जो अपने मूल संस्कृति, क्षमता और जिम्मेदारियों में अलग अलग हैं, फिर भी यीशु ख्रिस्त में सभी एक के रूप में पहचाने जाने के लिए बुलाए गए हैं, जो एक छिपे हुए खजाने हैं, कीमती मोती हैं, एक जाल हैं जो बिखरे हुए लोगों को एकत्रित करते हैं। शुरू से ही यीशु ने ऐसे लोगों को बुलाया और अपने आसपास एकत्रित किया जो अन्यथा कभी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। इस तरह उन्होंने दिखाया कि ईश्वर सिर्फ कुछ लोगों को पसंद नहीं करते, बल्कि वे अपना प्यार मुफ्त में सभी लोगों को देते हैं। खासकर छोटों या उन्हें जिन्हें छोड़ दिया जाता है। संत पापा ने विश्वासियों से कहा, भाइयों एवं बहनों, हमें बस वही वरदान मांगना है, वही उपहार जिससे युवा राजा सुलेमान ने मांगा था। यह अमूल्य मोती को पहचानने का, उस खजाने को पहचानने का वरदान है जिसके लिए सब कुछ बेच देना भी अधिक फायदेमंद है। जबकि उपभोक्ता संस्कृति हमारे पसंद को प्रभावित करती, हमें लगातार ऐसे साधन बेचने के लिए नई जरूरतें उत्पन्न करती हैं जो कभी संतुष्ट नहीं करती और कभी कभी दिल को भी विषक्त कर देती हैं। हमें यह परखने सीखना चाहिए कि क्या वास्तव में मायने रखता। ईश्वर के साथ रिश्ते का खजाना ही मायने रखता है जो हमें खुशी से खोलता और हमें एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को और अधिक खुलकर जीने में मदद करता है। प्रज्ञा का सिंहासन, माता मरियम की प्रार्थना जीवन के लिए हमारी चाह को यीशु की ओर ले जाए ताकि यह उनमें पूरी तरह से पूरी हो सके। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
3: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
2: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने नए धन्य घोषणा की याद करते हुए कहा, कल लेबनान में 1899 से 1931 तक मरोनाइट कलीसिया के अंताकिया के प्राधिधर्म अध्यक्ष और पौत्र परिवार की मरोनाइट धर्म बहनों के धर्म संघ के संस्थापक एलियास होए की धन्य घोषणा हुई, जिन्होंने 30 साल से भी अधिक समय तक बड़ी लग्न एवं प्रेरितिक संवेदनशीलता के साथ मरोनाइट कलीसिया का संचालन किया। समाज और आशा के व्यक्ति के रूप में वे कलीसिया, समाज और राजनीति के एक जाने माने व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें महान लेबनान के पिता कहा जाता था। संत पापा ने कहा, नए धन्य की प्रार्थनाएं और दुआएं हमेशा दुनिया भर में मरोनाइट विश्वासियों के साथ रहें और लेबनान के सभी लोगों के लिए शांति का वरदान लाएं, जिसको संत पापा ने कहा कि उन्हें बहुत प्रिय है। इसके बाद संत पापा ने पौत्र भूमि और पूरे मध्य पूर्व की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जताई, शांति की अपील दोहराई और तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की। पोप ने कहा, मैं पौत्र भूमि में जारी हिंसा एवं बिगड़ती स्थिति पर चिंता के साथ नज़र रख रहा हूं, जिसमें हाल में वेस्ट बैंक और गजा में कई आम लोगों की जाने गई हैं। मैं हार्दिक अपील करता हूँ कि हर इंसान की समान इज्जत और अधिकारों के आधार पर एक सही राजनीतिक समाधान के लिए बातचीत पर वापस लौटें और नई मिलिट्री कार्रवाइयों एवं एकतरफा फैसलों को नकारें, खासकर जो हर धर्म के पौत्र स्थानों के सम्मान और मौजूदा हालात का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं पूरे मध्य पूर्व की स्थिति के बारे में भी अपनी अपील दोहराता हूँ, जहाँ तेज मिलिट्री कार्रवाई से हिंसा और तबाही हुई है, जिससे कई आम लोगों की जान को गंभीर खतरा है और पीने के पानी एवं बिजली की कमी और भी बदतर हो गई है। मैं दिल की गहराई से इसमें शामिल सभी पार्टियों से गुजारिश करता हूँ कि वे हमले रोक दें और बातचीत एवं कूटनीति के लिए तुरंत जगहों को खोलें, ताकि पूरे इलाके के लिए जितने जल्दी हो सके शांति मिल सके। आइए हम दुनिया के उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो युद्ध के कारण परेशान हैं। ईश्वर जिम्मेदार लोगों के दिलों को छुए और उनके दिमाग को रोशन करे, ताकि जल्द ही मेल मिलाप हो और शांति मिल सके। हाल में फ्रांस एवं स्पेन के अलग अलग हिस्सों में लगी भयानक आग को देखते हुए पोप ने कहा, मैं उन्हें अपना सामीप्य व्यक्त करता हूँ और प्रभावित लोगों एवं बचाव दल के लिए प्रार्थना करने हेतु सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। तत्पश्चात संत पापा ने दादा दादी एवं बुजुर्गों के 6वें विश्व दिवस की याद की, जिसको जुलाई के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। उन्होंने कहा, आज दादा दादी एवं बुजुर्गों का 6वां विश्व दिवस है, जिसकी विषय वस्तु है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। पोप ने कहा, आइए हम सब मिलकर प्रभु को उस कृपा के लिए धन्यवाद दें जो बुजुर्ग लोग कलीसिया और समाज के लिए हैं, और आइए हम उनके कीमती भूमिका का सम्मान करें और उसे महत्व देने के लिए खुद को समर्पित करें तथा हमेशा यह सुनिश्चित करें कि उन्हें सही ध्यान एवं मदद मिल सके। तत्पश्चात संत पापा ने रोम, इटली एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का स्नेहपूर्वक अभिवादन किया। उन्होंने रोम के टाइबर नदी में फ्यूमारोला माता मरियम के जुलूस को भी प्रोत्साहन दिया और माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा, यीशु की माँ मरियम इस खूबसूरत परंपरा में प्रतिभागियों और हम सभी को हर दिन सुसमाचार की शिक्षाओं के अनुसार जीने में सक्षम बनाएं। और अंत में संत पापा ने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
3: E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने 26 जुलाई को पुर्तगाल के उत्तरी शहर लोमेगा में दूसरी आनंद राष्ट्रीय युवा दिवस में भाग लेने वाले पुर्तगाली युवाओं को एक वीडियो संदेश में प्रोत्साहन दिया कि वे अपनी बेचैनी को ईश्वर के करीब आने दें और उनके सामने अपने सबसे बड़े सवाल और गहरी इच्छाओं को प्रकट करें। संत पापा ने कहा, आप अपने भीतर की बेचैनी से न डरें, यह आपको मसीह के और करीब आने और सुसमाचार के मूल्यों की गवाही देने के लिए प्रेरित करे। दृढ़ता से यीशु के वचन में निहित हर दिन के सुसमाचार को पढ़ें और ऐसी भूमि का सपना देखना कभी बंद न करें जहां शांति और भाईचारा हो। न ही दुनिया को आश्चर्य से देखना बंद करें, न ही आशा की रोशनी के साथ भविष्य का सामना करना बंद करें। प्रिय युवाओं, किसी चीज या किसी को भी आपकी आशा चुराने न दें। संत पापा ने अगले साल दक्षिण कोरिया में होने वाले विश्व युवा दिवस का संदर्भ देते हुए कहा, लामेगा शहर में एक आनंदमय सभा जारी रखें और मुझे उम्मीद है कि मैं अगस्त 2027 में सियोल में आपसे मिलूंगा। संत पापा ने युवाओं को जिंदगी के जरूरी सवालों पर सोचने के लिए और अपनी किसी भी परेशानी को ईश्वर के सामने लाकर प्रार्थना में उनसे बात करने के लिए आमंत्रित किया। संत पापा ने जोर देकर कहा, उनसे पूछो, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं कलीसिया और दुनिया के लिए क्या करूं? मेरा काम क्या है? क्या आप मुझे शादी के जरिए परिवार बनाने के लिए बुला रहे हैं, या आप मुझे पुरोहित बनने के लिए बुला रहे हैं, या धार्मिक जीवन के लिए? ये जरूरी सवाल है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी को भी उस एक बात को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे अंदर की जिंदगी को एक रूपता देती है। ईश्वर हमेशा हमें पवित्रता के लिए बुलाते हैं और संत पूरी तरह से इंसान होते हैं, इसलिए खुद क्रिस्त की तरह सच्चे इंसान बने और आप जरूर इस दुनिया को बेहतर बना देंगे। संत पापा ने 2025 में रोम में युवा जुबली या जून में स्पेन के युवाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकात को याद करते हुए जोर देकर कहा, युवाओं के साथ रहना हमेशा कुछ खास होता है क्योंकि आपके विश्वास का उत्साह फैलता है। आप मसीह के लिए जो प्यार दिखाते हैं वह सुकून देने वाला है। हमारे अपने समय में आप जैसे युवाओं को विश्वास से भरा और इसे कहने से ना डरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि आप में सच्चाई के लिए गहरी प्यास है और आप उसे सच्चे दिल से खोजते हैं। यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि आप न्याय और दया के भूखे हैं और गुजरते हुए मूल्यों से संतुष्ट नहीं हैं। क्रिस्त हमारे साथ हैं और वे ही हमारी खुशी की वजह हैं, वे ही हमारी एकता के स्रोत हैं। इन इल्लो उनो उनुम, भले ही हम बहुत सारे हैं, हम क्रिस्त में एक शरीर हैं। संत पापा ने युवाओं से कहा कि वे जहां भी हों वहां खुश रहें और सभा में शामिल सभी लोगों के लिए स्वर्गीय कृपाओं की दुआ की। उधर पवित्र भूमि के संरक्षण के स्कूलों के प्रमुख फादर इब्राहिम फलतास वेस्ट बैंक की स्थिति पर दुख जताते हैं और उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं और उन लोगों को भी जो इस कभी न खत्म होने वाले चक्र को रोकने के लिए दखल नहीं देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसराइल और फिलिस्तीन में घोषित चुनाव दोनों लोगों के लिए नया संतुलन और नया न्याय लाएंगे। फादर इब्राहिम फलतास ने कहा, गाजा की तरह वेस्ट बैंक एक ऐसा इलाका बन गया है जिसने अपना पैमाना और अपनी जगहें खो दी हैं। एक ऐसी जगह जो अब पहचानी नहीं जाती, एक ऐसी जमीन जो शारीरिक और सामाजिक रूप से बटी हुई है, गहरे जख्मों से भरी हुई है और अपनी ऐतिहासिक पहचान से बेइज्जत है। इस जमीन का हर कोना हर दिन हिंसा और तबाही झेल रहा है। हर रहने वाला तंगी, पाबंदियों और तकलीफों और बेइज्जती को झेलता है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी बदतर होती जा रही है। इतने सालों में बस्तियों ने
हर गांव सामुदायिक जीवन के हर निशान को घेर लिया है। वे फिलिस्तीनी जिंदगी को बिना अपनाए घेर लेती हैं। वे उनका दम घोंट देती हैं। वे नौजवानों की आशाओं को मार रही हैं, जो अब अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे उन लोगों की उम्मीदों को तोड़ रहे हैं जिन्होंने अतीत और वर्तमान को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वे उन बच्चों के मुस्कान और सपनों को चकनाचूर कर देते हैं जो अपनी जमीन को जलते, सीमित होते और रंगहीन होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा खत्म करने के लिए संत पापा लियो की जोरदार अपील सुनी जानी चाहिए, जो दोनों को जो इसे करते हैं और उन लोगों को भी जो इसे कभी न खत्म होने वाले चक्र को रोकने के लिए दखल नहीं देते। उम्मीद की इतिहास का रास्ता बदल सकता है उन लोगों को कभी नहीं छोड़ती जिन्हें ईश्वर पर भरोसा और विश्वास है। उधर बर्लिन में एक कार्यक्रम के दौरान एक मिनी वैन का तेज रफ्तार से भीड़ में घुसने के बाद स्थानीय कलीसिया जर्मन नेता और यूरोपीय अधिकारी नफरत का विरोध कर रहे हैं। बर्लिन के महाधर्माध्यक्ष हेनर कोच ने जर्मन कैथोलिक न्यूज एजेंसी को शनिवार 25 जुलाई की शाम को हुए इस हमले के बारे में कहा कि यह कितनी भयानक घटना है, नफरत को जीतना नहीं चाहिए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 30 लोग घायल हो गए। यह हमला जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ। रात करीब 10 बजे एक सफेद मिनी वैन टियर गार्डन सिटी पार्क में जमा भीड़ में घुसती हुई देखी गई, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। एक महिला और 16 दूसरे लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत बहुत गंभीर है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर

0: समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
1: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो चौदहवें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना उन्होंने 25 मई 2026 को की। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण में मानव के कार्य के संबंध में विचार करते हुए उसे जनहित की भलाई हेतु समर्पित होने की बात कही, जो हमें मानवीय कमजोरियों को स्वीकारने तथा हमारे सभी कार्यों को सामाजिक भलाई की ओर केंद्रित करने का आह्वान करता है। अपनी प्रस्तावना के अंत में संत पापा लिखते हैं, अंत में जन सामान्य के हितों हेतु कार्य करना हमसे सुसामाचारी भाषा की मांग करती है। हमें चाहिए कि हम चोट पहुंचाने वाली या विरोधाभाव शब्दों से अपने को दूर करें। इसके बदले हमें चाहिए कि हम स्पष्टता के लिए खुला हों, जो हमें प्रकाशित करती है, और एक खुलापन जो हमारे लिए नई संभावनाओं को खोलती है। हम अनुभवहीन उत्साह को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ना ही बेबुनियाद डर को हवा दे सकते हैं। इसके बदले में हम आत्मपरक हेतु एक स्तर स्थापित करें। मानव का सम्मान, चीजों का वैश्विक लक्ष्य, गरीबों के लिए विकल्प, सामान्य निवास की देखभाल और शांति, और हम इन मानकों का अभ्यास करें, जैसे कि उत्तरदायी रूप में योजना बनाने हेतु मानव और सामाजिक प्रभावकारिता का मूल्यांकन, अति संवेदनशीलों को सम्माहित करने, डिजिटल शिक्षण को प्रोत्साहन और दिशा निर्देशित शोध तथा न्याय और शांति के लिए स्थापना। संत पापा कहते हैं, हाल ही के जयंती वर्ष 2025 में हमने आशा के तीर्थ यात्रियों की तरह तीर्थ करते हुए अपने को असंख्य कृपाओं से पोषित किया है। इन उपहारों से मजबूत होते हुए हम अपने जीवन में विश्वास के संग आगे बढ़ते और कठिन कार्यों तथा चुनौतियों का सामना करते हैं, जो हमारे सामने आती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में जब मानव सम्मान को हम नए रूपों में अमानवीयता का शिकार होता पाते हैं, यह हमारे लिए अति जरूरी कर्तव्य बनता है कि परिपूर्ण मानवीय बने रहें। हमें चाहिए कि हम प्रेम से मानवीय भव्यता की सुरक्षा करें, जो हमें दिया गया है और जो ख्रीस्त की पूर्णता में व्यक्त किया गया है, जिसकी अद्वितीयता को कोई भी यंत्र हस्तांतरित नहीं कर सकता है। सच्चे विकास की उत्पत्ति हमारे लिए अपने हृदयों को दूसरों के लिए खुला रखने से होती है। सुनने की एक विवेकपूर्ण चाह और एक चाह जो जोड़ने की खोज करती है, ना कि तोड़ने की। श्रोताओं, संत पापा लियो अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं कि मैं इस हृदय से उठने वाली इस अपील को कलिस्से के सभी विश्वासियों के लिए करता हूँ, सभी ख्रिस्तियों और नेक दिली नर और नारियों के लिए। आइए हम अपने समय के निर्माण स्थल को तैयार करने हेतु अपने हाथों को गंदा करने से ना डरें। नबी नेहमिया की भांति आइए हम प्रार्थना करें, विचारपूर्ण तरीके से योजना बनाएं और धैर्य में कार्य करें। ईश्वर को अपने कार्यों के सामने रखते हुए और मानव को हमारे चुनावों के केंद्र में स्थापित करते हुए इस भांति परित्यक्त पत्थर, दरिद्र, बीमार, शरणार्थी और सबसे छोटे लोग जो हमारे बीच में रहते हैं कोने का पत्थर बनेंगे और एक ठोस स्वागत करने वाला घर इस पृथ्वी पर उभर कर आएगा, जहां प्रेम और निष्ठा का अंततः मिलन होगा और धार्मिकता तथा शांति अपने में आलिंगन करेंगे। हम इस आशीष की कृपा ईश्वर से करते हैं और हमारे सामने जो कार्य खड़ा है वह एकता के निर्माण करता होना है, ना कि बाबेल के शिल्पकार होना। हम सभी आने वाले राज्य के सेवक गण हैं, ना कि उस मीनार के स्वामी जिसकी नियति नष्ट होने की है। एक चरवाही और पिता के हृदय से मैं हर एक से इस बात हेतु निवेदन करता हूँ कि आप पुनः एक दूसरे बाबिल के मीनार का निर्माण करना छोड़ें और अपनी ताकत को जन सामान्य की भलाई के निर्माण में उपयोग करें, जिससे मानवता अपनी सुंदरता कभी न खोई और दुनिया पुनः इस बात को पहचान सके कि मानव का हृदय वह स्थल है जहां ईश्वर निवास करने की चाह रखते हैं। श्रोताओं, संत पापलियो 14वें के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास का प्रथम अध्याय सुसमाचार के प्रति आस्थावान दृष्टिकोण है। इस प्रथम अध्याय में संत पापा लियो कहते हैं कि मैं संक्षिप्त रूप में कलीसिया के सामाजिक धर्म सिद्धांत को प्रस्तुत करने की चाह रखता हूँ कि यह कैसे परम धर्म पीठ का धर्म सिद्धांत और द्वितीय वैटिकन महासभा का स्वरूप बना, जिससे इसकी बहुआयामी विशेषताएं प्रकट हो सकें। वास्तव में हर सदी में नई चीजों को चाहिए कि यह शिक्षा ऐतिहासिक सवालों को प्रकट की गई सच्चाई की ज्योति में सुलझाई जाए। इस संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी हम सिर्फ एक अध्ययन की विषय वस्तु या एक समस्या स्वरूप नहीं ले सकते हैं जिसका हमें सामना करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें इसे एक विकास की भांति देखने की जरूरत है जो हमारे सामाजिक धर्म सिद्धांत के स्वरूप को अंदर से चुनौती प्रदान करती है, जो हमें सुसमाचार के प्रति और अधिक निष्ठा में बढ़ने का आह्वान करती है। श्रोताओं, हालांकि यह अवलोकन बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा अगर यदि हम संत पापाओं के व्यक्तिगत महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर चिंतन करने से पहले कुछ विशेष आधारभूत सिद्धांतों के बारे में स्पष्टता हासिल नहीं करते, जिनके आधार पर कलीसिया का अस्तित्व इतिहास में बना रहता और जिसके माध्यम वह दुनिया से जुड़ी रहती है। ऐसा करने की असफलता सामाजिक धर्म सिद्धांत को दुनियावी मामलों में गलत दखलअंदाजी या ऊपर से थोपा गया बाहरी नैतिक संहिता स्वरूप देख सकती है। वास्तव में इसकी उत्पत्ति एक कलीसिया से होती है जो मानव के संग चलती, जो दुनिया की सच्चाइयों की आजादी को समझती और कलीसिया और राजनीतिक समुदायों के बीच के फर्क को पहचानती है। यही वजह है कि वह सबकी भलाई के लिए कार्य करती है। श्रोताओं, कलीसिया दुनिया में संपूर्ण मानव परिवार के लिए एकता की एक निशानी स्वरूप उपस्थित है। वह आज के सवालों और चुनौतियों को समझती है जहां वह अपनी विशेष बुलाहट सुनना, वार्ता और सेवा करने को पूरा करने हेतु अग्रसर होती है और वह वर्तमान समय के नर नारियों के जीवन और हर बात की चिंता करती और उसका प्रत्युत्तर देती है। लोगों के जीवन में कलीसिया का यह संलग्न होना उसे और गहराई से अपनी प्रेरिताई को समझने में मदद करती है कि उसका एक ऐतिहासिक दायरा है और उसमें सामाजिक संबंध बनाने के तरीके की जिम्मेदारी शामिल है। इस कारण से समाज निर्माण की शक्तियों के संबंध में वह एक अपरिचित के रूप में नहीं देखी जा सकती है। इसके विपरीत कलीसिया सक्रिय रूप से उन प्रक्रियाओं में सहभागी होती है जिनके द्वारा समाज का निर्माण और विकास होता है और वह अपनी ओर से एक बेहतर और भ्रातृत्वमय समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। संत पापा फ्रांसिस इस संदर्भ में कलीसिया की प्रेरिताई के ऐतिहासिक आयाम पर जोर देते हैं। कोई भी यह मांग नहीं कर सकता है कि धर्म को निजी जीवन के अंदरूनी हिस्से तक सीमित कर दिया जाए, उसका सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन पर कोई प्रभाव ना हो, उसे नागरिक संस्थानों की मजबूती की कोई चिंता ना हो, समाज को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर उसका राय देने का अधिकार ना हो। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारी कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें कस्तेल गंदोल्फो के प्रेरित आवास में करीब 3 हफ्ते तक अवकाश में व्यतीत करने के बाद वैटिकन लौटे। 27 जुलाई की शाम 8:30 बजे के बाद पोप कस्तेल गंदोल्फो से निकले। उन्होंने अपनी छुट्टियां 5 जुलाई को शुरू की थी। जब उनकी कार प्रेरित आवास से निकली तो पोप ने उन लोगों का अभिवादन किया जो उन्हें विदा करने के लिए एकत्रित थे और अपने माता पिता के साथ इंतजार कर रहे कई बच्चों को आशीर्वाद दिया। 29 जुलाई को शांति के भजन में शामिल होने के लिए पोप फिर से कस्तेल गंदोल्फो लौटेंगे, जो प्रार्थना और भाईचारे की सभा होगी। उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी सेंटर के तत्वाधान में आयोजित अंद्रेया बोचेली फाउंडेशन का यह कार्यक्रम संत फ्रांसिस असीसी के निधन की 8वीं सालगिरह के उत्सव का हिस्सा है। यह शाम 7 बजे कस्तेल गंदोल्फो के उद्यान में शुरू होगा। कस्तेल गंदोल्फो में 23 दिनों के अवकाश के दौरान पोप लियो ने प्रार्थना में समय व्यतीत की, अध्ययन एवं कुछ खेल कूद के लिए समय निकाला। रोम के बाहर अल्बान पहाड़ पर अल्बानो झील के सामने बसा यह छोटा सा शहर इटली के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है। 5, 12, 19 एवं 26 जुलाई को देवदूत प्रार्थना में विश्वासों को संबोधित करने और उनसे मुलाकात करने के अलावा पोप लियो ने 2 और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 11 जुलाई को पोप ने रोमधम प्रांत के उन 200 लोगों के साथ कस्तेल गंदोल्फो के उद्यान में भोजन किया जो सामाजिक रूप से कमजोर परिस्थितियों में रहते हैं, जिनमें 35 बच्चे भी शामिल थे। एक हफ्ते के बाद 18 जुलाई को उन्होंने प्रेरितिक आवास के आंगन में अल्बानो धम प्रांत द्वारा आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंतिम सप्ताह में पोप लियो 3 व्यक्तिगत दौरे के लिए 2 बार बाहर निकले। 20 जुलाई को उन्होंने मोंते कसिनो के बेनेडिक्टाइन मठ का दौरा किया और 22 जुलाई को उन्होंने सुब्याको में संत बेनेडिक्ट एवं संत स्कोलास्टिका के मठों का दौरा करने से पहले वाले पियत्रा में पौत्र त्रित्वा के तीर्थस्थल की यात्रा की। दुनिया भर के संकट प्रभावित हिस्सों से बच्चों और युवाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय गायक दल संत पापा लियो 14वें और अंद्रेया बोचेली के साथ मिलकर 29 जुलाई को बोर्गो लाउदातो सी में शांति की प्रार्थना में शामिल होगा, जिसमें शांति की स्वाभाविक भाषा के रूप में संगीत का उपयोग किया जाएगा। यह कार्यक्रम शांति का गीत संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु के 800 साल पूरा होने के उत्सव का हिस्सा है। संत पापा लियो 14वें संत फ्रांसिस की सृष्टि का गीत के शब्दों से प्रेरणा लेते हुए दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना एवं चिंतन का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक संगीत होगा। पवित्र भूमि युगांडा, हैती और इटली से 160 से ज्यादा युवा संगीतकार आएंगे। गायक दल में अपने अनुभव के जरिए बच्चे और युवा आपसी समझ, एक सामान्य मकसद एवं मुलाकात की अहमियत को फिर से जानेंगे। पोप के साथ प्रार्थना एवं संगीत का यह समय 10 दिन की उस सभा का समापन है जिसने पहली बार वार्षिक गांव की भावना से संगीत के जरिए गायक दल एवं शिक्षकों को जोड़ा। लाउदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र एवं अंद्रेया बोचेली संस्थान की एक संयुक्त प्रेस रिलीज में लाउदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र के महानिदेशक कार्डिनल फाबियो बाजो ने बताया कि शांति का गीत कार्यक्रम दिखाता है कि कैसे बोर्गो एक ऐसी जगह है जहां विश्वास को मुलाकात, शिक्षा और भाईचारे के ठोस चिन्हों में बदला जाता है। बढ़ते झगड़ों और बंटवारे वाले दुनिया में कार्डिनल फाबियो ने इस बात पर जोर दिया कि संत फ्रांसिस के गीत से प्रेरित इस सभा में संत पापा लियो के साथ अलग अलग तरह के युवाओं को एक साथ लाना इस बात का प्रमाण है कि शांति सबसे पहले और सबसे बढ़कर मुलाकात, बातचीत और आपसी देखभाल के लिए शिक्षित करके बनाई जाती है। यही बोर्गो लाउदातो सी का मिशन है। इसका मकसद दुनिया के कोने कोने तक शांति की संस्कृति को साझा करना है, एक ऐसी संस्कृति जो भाईचारे, देखभाल और दुनिया के प्रति सम्मान एवं हर व्यक्ति की गरिमा पर आधारित हो। एशिया के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC ने अपनी 12वीं महासभा को एशिया के लोगों के लिए अपने अंतिम संदेश जारी करते हुए समाप्त किया। संघ ने पूरे महादेश की कलीसिया से कहा कि वह विभाजन, भेदभाव और तेजी से बढ़ते समाज में पुल एवं पुल निर्माता बनकर अपनी सिनोडल यात्रा को और सशक्त करे।
जकार्ता के माता मरियम के स्वर्गरोहण महागिरजा घर में महासभा समापन के लिए अर्पित मिस्सा बलिदान में तुम इससे भी महान चीज देखोगे विषय वस्तु पर एक संदेश सुनाया गया, जिस पर महासभा में हिस्सा लेने वालों की ओर से गोवा और दमन के महाधर्माध्यक्ष एवं FABC के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने हस्ताक्षर किए हैं। एशिया के सभी भले लोगों को संबोधित यह संदेश सिनोडल एकता और एशिया में पुल एवं पुल निर्माता बनने के मिशन विषय वस्तु के तहत हुए एक हफ्ते तक चलने वाली महासभा के आध्यात्मिक फलों को दर्शाता है। पूरे एशिया के धर्माध्यक्ष प्रतिनिधि और साझेदार तेजी से बदलती दुनिया में कलीसिया के मिशन को समझने के लिए एकत्रित हुए थे। यीशु के नथानाएल से कहे शब्दों तुम और भी महान चीजें देखोगे से प्रेरित होकर धर्माध्यक्ष ने कहा कि महासभा ने हिस्सा लेने वालों को डर और सीमाओं से आगे बढ़कर ईश्वर के राज के एक नए नजरिए की ओर बढ़ने के लिए आमंत्रित किया। संदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि सिनोडालिटी सिर्फ राज करने का एक तरीका नहीं है बल्कि मिशन की ओर ले जाने वाला बदलाव का रास्ता है। यह इस बात पर जोर देता है कि असली बदलाव कलीसिया की संरचना एवं संस्थान में दिखने से पहले परिवर्तित दिलों गहरे रिश्तों और ध्यान से सुनने से शुरू होता है। प्रार्थना शांति सुनने और आत्मा में बातचीत के दिनों पर चिंतन करते हुए धर्माध्यक्ष ने यह पक्का यकीन जताया कि एशिया में कलीसिया को लगातार सिनोडल बदलाव के जरिए महाद्वीप की समृद्ध सांस्कृति धार्मिक और सामाजिक विविधता को अपनाकर पुल बनाने के लिए बुलाया गया है। महासभा ने एशिया के सामने मौजूद कई चुनौतियों को भी स्वीकार किया। इनके जवाब में धर्माध्यक्षों ने कलीसिया से उम्मीद बातचीत मेल मिलाप और एकजुटता की निशानी बनने की अपील की और पूरे महादेश में एकता को बढ़ावा देकर और सबकी भलाई के लिए काम करके मसीह की गवाही देने का प्रोत्साहन दिया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो चौदहवें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना उन्होंने 25 मई 2026 को की। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण में मानव के कार्य के संबंध में विचार करते हुए उसे जनहित की भलाई हेतु समर्पित होने की बात कही, जो हमें मानवीय कमजोरियों को स्वीकारने तथा हमारे सभी कार्यों को सामाजिक भलाई की ओर केंद्रित करने का आह्वान करता है। अपनी प्रस्तावना के अंत में संत पापा लिखते हैं, अंत में जन सामान्य के हितों हेतु कार्य करना हमसे सुसामाचारी भाषा की मांग करती है। हमें चाहिए कि हम चोट पहुंचाने वाली या विरोधाभाव शब्दों से अपने को दूर करें। इसके बदले हमें चाहिए कि हम स्पष्टता के लिए खुला हों, जो हमें प्रकाशित करती है, और एक खुलापन जो हमारे लिए नई संभावनाओं को खोलती है। हम अनुभवहीन उत्साह को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ना ही बेबुनियाद डर को हवा दे सकते हैं। इसके बदले में हम आत्मपरक हेतु एक स्तर स्थापित करें। मानव का सम्मान, चीजों का वैश्विक लक्ष्य, गरीबों के लिए विकल्प, सामान्य निवास की देखभाल और शांति, और हम इन मानकों का अभ्यास करें, जैसे कि उत्तरदायी रूप में योजना बनाने हेतु मानव और सामाजिक प्रभावकारिता का मूल्यांकन, अति संवेदनशीलों को सम्माहित करने, डिजिटल शिक्षण को प्रोत्साहन और दिशा निर्देशित शोध तथा न्याय और शांति के लिए स्थापना। संत पापा कहते हैं, हाल ही के जयंती वर्ष 2025 में हमने आशा के तीर्थ यात्रियों की तरह तीर्थ करते हुए अपने को असंख्य कृपाओं से पोषित किया है। इन उपहारों से मजबूत होते हुए हम अपने जीवन में विश्वास के संग आगे बढ़ते और कठिन कार्यों तथा चुनौतियों का सामना करते हैं, जो हमारे सामने आती है। कृत्रिम बुद्धिमता के इस दौर में जब मानव सम्मान को हम नए रूपों में अमानवीयता का शिकार होता पाते हैं, यह हमारे लिए अति जरूरी कर्तव्य बनता है कि परिपूर्ण मानवीय बने रहें। हमें चाहिए कि हम प्रेम से मानवीय भव्यता की सुरक्षा करें, जो हमें दिया गया है और जो ख्रीस्त की पूर्णता में व्यक्त किया गया है, जिसकी अद्वितीयता को कोई भी यंत्र हस्तांतरित नहीं कर सकता है। सच्चे विकास की उत्पत्ति हमारे लिए अपने हृदयों को दूसरों के लिए खुला रखने से होती है। सुनने की एक विवेकपूर्ण चाह और एक चाह जो जोड़ने की खोज करती है, ना कि तोड़ने की। श्रोताओं, संत पापा लियो अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं कि मैं इस हृदय से उठने वाली इस अपील को कलिसिया के सभी विश्वासियों के लिए करता हूँ, सभी ख्रिस्तियों और नेक दिली नर और नारियों के लिए। आइए हम अपने समय के निर्माण स्थल को तैयार करने हेतु अपने हाथों को गंदा करने से ना डरें। नबी नेहमिया की भांति आइए हम प्रार्थना करें, विचारपूर्ण तरीके से योजना बनाएं और धैर्य में कार्य करें। ईश्वर को अपने कार्यों के सामने रखते हुए और मानव को हमारे चुनावों के केंद्र में स्थापित करते हुए। इस भांति परित्यक्त पत्थर, दरिद्र, बीमार, शरणार्थी और सबसे छोटे लोग जो हमारे बीच में रहते हैं कोने का पत्थर बनेंगे और एक ठोस स्वागत करने वाला घर इस पृथ्वी पर उभर कर आएगा, जहां प्रेम और निष्ठा का अंततः मिलन होगा और धार्मिकता तथा शांति अपने में आलिंगन करेंगे। हम इस आशीष की कृपा ईश्वर से करते हैं और हमारे सामने जो कार्य खड़ा है वह एकता के निर्माण करता होना है, ना कि बाबेल के शिल्पकार होना। हम सभी आने वाले राज्य के सेवक गण हैं, ना कि उस मीनार के स्वामी जिसकी नियति नष्ट होने की है। एक चरवाही और पिता के हृदय से मैं हर एक से इस बात हेतु निवेदन करता हूँ कि आप पुनः एक दूसरे बाबिल के मीनार का निर्माण करना छोड़ें और अपनी ताकत को जन सामान्य की भलाई के निर्माण में उपयोग करें, जिससे मानवता अपनी सुंदरता कभी न खोई और दुनिया पुनः इस बात को पहचान सके कि मानव का हृदय वह स्थल है जहां ईश्वर निवास करने की चाह रखते हैं। श्रोताओं, संत पापलियो 14वें के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास का प्रथम अध्याय सुसमाचार के प्रति आस्थावान दृष्टिकोण है। इस प्रथम अध्याय में संत पापा लियो कहते हैं कि मैं संक्षिप्त रूप में कलीसिया के सामाजिक धर्म सिद्धांत को प्रस्तुत करने की चाह रखता हूँ कि यह कैसे परम धर्म पीठ का धर्म सिद्धांत और द्वितीय वैटिकन महासभा का स्वरूप बना, जिससे इसकी बहुआयामी विशेषताएं प्रकट हो सकें। वास्तव में हर सदी में नई चीजों को चाहिए कि यह शिक्षा ऐतिहासिक सवालों को प्रकट की गई सच्चाई की ज्योति में सुलझाई जाए। इस संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी हम सिर्फ एक अध्ययन की विषय वस्तु या एक समस्या स्वरूप नहीं ले सकते हैं जिसका हमें सामना करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें इसे एक विकास की भांति देखने की जरूरत है जो हमारे सामाजिक धर्म सिद्धांत के स्वरूप को अंदर से चुनौती प्रदान करती है, जो हमें सुसमाचार के प्रति और अधिक निष्ठा में बढ़ने का आह्वान करती है। श्रोताओं, हालांकि यह अवलोकन बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा अगर यदि हम संत पापाओं के व्यक्तिगत महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर चिंतन करने से पहले कुछ विशेष आधारभूत सिद्धांतों के बारे में स्पष्टता हासिल नहीं करते, जिनके आधार पर कलीसिया का अस्तित्व इतिहास में बना रहता और जिसके माध्यम वह दुनिया से जुड़ी रहती है। ऐसा करने की असफलता सामाजिक धर्म सिद्धांत को दुनियावी मामलों में गलत दखलअंदाजी या ऊपर से थोपा गया बाहरी नैतिक संहिता स्वरूप देख सकती है। वास्तव में इसकी उत्पत्ति एक कलीसिया से होती है जो मानव के संग चलती, जो दुनिया की सच्चाइयों की आजादी को समझती और कलीसिया और राजनीतिक समुदायों के बीच के फर्क को पहचानती है। यही वजह है कि वह सबकी भलाई के लिए कार्य करती है। श्रोताओं, कलीसिया दुनिया में संपूर्ण मानव परिवार के लिए एकता की एक निशानी स्वरूप उपस्थित है। वह आज के सवालों और चुनौतियों को समझती है जहां वह अपनी विशेष बुलाहट सुनना, वार्ता और सेवा करने को पूरा करने हेतु अग्रसर होती है और वह वर्तमान समय के नर नारियों के जीवन और हर बात की चिंता करती और उसका प्रत्युत्तर देती है। लोगों के जीवन में कलीसिया का यह संलग्न होना उसे और गहराई से अपनी प्रेरिताई को समझने में मदद करती है कि उसका एक ऐतिहासिक दायरा है और उसमें सामाजिक संबंध बनाने के तरीके की जिम्मेदारी शामिल है। इस कारण से समाज निर्माण की शक्तियों के संबंध में वह एक अपरिचित के रूप में नहीं देखी जा सकती है। इसके विपरीत कलीसिया सक्रिय रूप से उन प्रक्रियाओं में सहभागी होती है जिनके द्वारा समाज का निर्माण और विकास होता है और वह अपनी ओर से एक बेहतर और भ्रातृत्व में समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। संत पापा फ्रांसिस इस संदर्भ में कलिस्से की प्रेरिताई के ऐतिहासिक आयाम पर जोर देते हैं। कोई भी यह मांग नहीं कर सकता है कि धर्म को निजी जीवन के अंदरूनी हिस्से तक सीमित कर दिया जाए, उसका सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन पर कोई प्रभाव ना हो, उसे नागरिक संस्थानों की मजबूती की कोई चिंता ना हो, समाज को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर उसका राय देने का अधिकार ना हो। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारी कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदवे के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें कस्तिल गंदोल्फो के प्रेरित आवास में करीब 3 हफ्ते तक अवकाश में व्यतीत करने के बाद वैटिकन लौटे। 27 जुलाई की शाम 8:30 बजे के बाद पोप कस्तिल गंदोल्फो से निकले। उन्होंने अपनी छुट्टियां 5 जुलाई को शुरू की थी। जब उनकी कार प्रेरितिक आवास से निकली तो पोप ने उन लोगों का अभिवादन किया जो उन्हें विदा करने के लिए एकत्रित थे और अपने माता पिता के साथ इंतजार कर रहे कई बच्चों को आशीर्वाद दिया। 29 जुलाई को शांति के भजन में शामिल होने के लिए पोप फिर से कस्तिल गंदोल्फो लौटेंगे, जो प्रार्थना और भाईचारे की सभा होगी। उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी सेंटर के तत्वाधान में आयोजित अंद्रेया बोचेली फाउंडेशन का यह कार्यक्रम संत फ्रांसिस असीसी के निधन की 8वीं सालगिरह के उत्सव का हिस्सा है। यह शाम 7 बजे कस्तिल गंदोल्फो के उद्यान में शुरू होगा। कस्तिल गंदोल्फो में 23 दिनों के अवकाश के दौरान पोप लियो ने प्रार्थना में समय व्यतीत की, अध्ययन एवं कुछ खेल कूद के लिए समय निकाला। रोम के बाहर अल्बान पहाड़ पर अल्बानो झील के सामने बसा यह छोटा सा शहर इटली के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है। 5, 12, 19 एवं 26 जुलाई को देवदूत प्रार्थना में विश्वासों को संबोधित करने और उनसे मुलाकात करने के अलावा पोप लियो ने 2 और सार्वजनिक

एवं संत स्कोलास्टिका के मठों का दौरा करने से पहले वाले पियत्रा में पौत्र त्रित्वा के तीर्थस्थल की यात्रा की। दुनिया भर के संकट प्रभावित हिस्सों से बच्चों और युवाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय गायक दल संत पापलियो चौदहवें और अंद्रेया बोचेली के साथ मिलकर 29 जुलाई को बोर्गो लाउदातो सी में शांति की प्रार्थना में शामिल होगा, जिसमें शांति की सार्वभौमिक भाषा के रूप में संगीत का उपयोग किया जाएगा। यह कार्यक्रम शांति का गीत संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु के 800 साल पूरा होने के उत्सव का हिस्सा है। संत पापलियो चौदहवें संत फ्रांसिस के सृष्टि का गीत के शब्दों से प्रेरणा लेते हुए दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना एवं चिंतन का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक संगीत होगा। पौत्र भूमि युगांडा हैती और इटली से 160 से ज्यादा युवा संगीतकार आएंगे। गायक दल में अपने अनुभव के जरिए बच्चे और युवा आपसी समझ, एक सामान्य मकसद एवं मुलाकात की अहमियत को फिर से जानेंगे। पोप के साथ प्रार्थना एवं संगीत का यह समय 10 दिन की उस सभा का समापन है जिसने पहली बार वार्षिक गांव की भावना से संगीत के जरिए गायक दल एवं शिक्षकों को जोड़ा। लाउदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र एवं अंद्रेया बोचेली संस्थान की एक संयुक्त प्रेस रिलीज में लाउदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र के महानिदेशक कार्डिनल फाबियो बाजो ने बताया कि शांति का गीत कार्यक्रम दिखाता है कि कैसे बोर्गो एक ऐसी जगह है जहां विश्वास को मुलाकात, शिक्षा और भाईचारे के ठोस चिन्हों में बदला जाता है। बढ़ते झगड़ों और बंटवारे वाले दुनिया में कार्डिनल फाबियो ने इस बात पर जोर दिया कि संत फ्रांसिस के गीत से प्रेरित इस सभा में संत पापलियो के साथ अलग अलग तरह के युवाओं को एक साथ लाना इस बात का प्रमाण है कि शांति सबसे पहले और सबसे बढ़कर मुलाकात, बातचीत और आपसी देखभाल के लिए शिक्षित करके बनाई जाती है। यही बोर्गो लाउदातो सी का मिशन है। इसका मकसद दुनिया के कोने कोने तक शांति की संस्कृति को साझा करना है, एक ऐसी संस्कृति जो भाईचारे, देखभाल और दुनिया के प्रति सम्मान एवं हर व्यक्ति की गरिमा पर आधारित हो। एशिया के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों के संघ FABC ने अपनी 12वीं महासभा को एशिया के लोगों के लिए अपने अंतिम संदेश जारी करते हुए समाप्त किया। संघ ने पूरे महादेश की कलीसिया से कहा कि वह विभाजन, भेदभाव और तेजी से बढ़ते समाज में पुल एवं पुल निर्माता बनकर अपनी सिनोडल यात्रा को और सशक्त करे। जकार्ता के माता मरियम के स्वर्गारोहण महागिरजा घर में महासभा समापन के लिए अर्पित मिस्सा बलिदान में तुम इससे भी महान चीज देखोगे विषय वस्तु पर एक संदेश सुनाया गया, जिस पर महासभा में हिस्सा लेने वालों की ओर से गोवा और दमन के महाधर्माध्यक्ष एवं FABC के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने हस्ताक्षर किए हैं। एशिया के सभी भले लोगों को संबोधित यह संदेश सिनोडल एकता और एशिया में पुल एवं पुल निर्माता बनने के मिशन विषय वस्तु के तहत हुई एक हफ्ते तक चलने वाली महासभा के आध्यात्मिक फलों को दर्शाता है। पूरे एशिया के धर्माध्यक्ष, प्रतिनिधि और साझेदार तेजी से बदलती दुनिया में कलीसिया के मिशन को समझने के लिए एकत्रित हुए थे। यीशु के नथानाएल से कहे शब्दों तुम और भी महान चीजें देखोगे से प्रेरित होकर धर्माध्यक्ष ने कहा कि महासभा ने हिस्सा लेने वालों को डर और सीमाओं से आगे बढ़कर ईश्वर के राज के एक नए नजरिए की ओर बढ़ने के लिए आमंत्रित किया। संदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि सिनोडालिटी सिर्फ राज करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि मिशन की ओर ले जाने वाला बदलाव का रास्ता है। यह इस बात पर जोर देता है कि असली बदलाव कलीसिया की संरचना एवं संस्थान में दिखने से पहले परिवर्तित दिलों, गहरे रिश्तों और ध्यान से सुनने से शुरू होता है। प्रार्थना, शांति, सुनने और आत्मा में बातचीत के दिनों पर चिंतन करते हुए धर्माध्यक्ष ने यह पक्का यकीन जताया कि एशिया में कलीसिया को लगातार सिनोडल बदलाव के जरिए महाद्वीप की समृद्ध सांस्कृति, धार्मिक और सामाजिक विविधता को अपनाकर पुल बनाने के लिए बुलाया गया है। महासभा ने एशिया के सामने मौजूद कई चुनौतियों को भी स्वीकार किया। इनके जवाब में धर्माध्यक्षों ने कलीसिया से उम्मीद, बातचीत, मेल मिलाप और एकजुटता की निशानी बनने की अपील की और पूरे महादेश में एकता को बढ़ावा देकर और सबकी भलाई के लिए काम करके मसीह की गवाही देने का प्रोत्साहन दिया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।